0: बातें नहीं है, काम होने के बाद पैसे देने हैं। इतने लोगों को हम ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं, आसान से कोर्स करने हैं आपने, हमारे अंकल आंटी ने आसान से कोर्स करने हैं, फुली ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, 3 घंटे आपने ऑनलाइन रहना है, अटेंडेंस लाइक मैंडेटरी है 75%, और आप सीख भी रहे हैं अकाउंटिंग मैनेजमेंट, फंडिंग भी हासिल करते हैं मेरे नहीं अपने अकाउंट में, जब गवर्नमेंट इतनी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, फॉरेन एड में बिलियन डॉलर, डेंटल इंश्योरेंस, ये वो अपने रेलगाड़ी बना रहे हैं अल्टो नाम की, $90 बिलियन लगा के, वो पता नहीं कौन बैठेगा उसमें, बट लेकिन जब गवर्नमेंट चीजों में इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, अपॉर्चुनिटी तो मिस ना करें, कॉल आप हमें अभी नहीं कर सकते हैं 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 कॉल करें, एस्टिमेट लें, ऑफिस आए, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए, फंडिंग को मिस ना करें 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175
1: सो नाल दी नाल ये भी दसो कि थोड़ी फीस किन्नी है और जिहड़ी फंडिंग आ जे वो सीधी थोड़े अकाउंट दे विच आऊगी या क्लाइंट दे अकाउंट दे विच आऊगी?
0: हम सिर्फ एक जरिया है इसमें और कोई एज लिमिट नहीं है, क्लाइंट हमारे 75 के भी है, 30 इयर्स के भी है, पेंशन वाले भी क्लाइंट्स हैं, फंडिंग सीधा क्लाइंट के अकाउंट में जाती है, हमारे पास कुछ नहीं आता। आज हम पूरी लिस्ट बना रहे थे, आज ना थोड़ा रश कम था तो हमें अब टाइम मिला कि भाई अब आगे कैसे 17 दिन बाद के अलग स्क्रिप्ट बनेगी, राइट, कि एडुकेशन लोन अभी बन गई ग्रांट, हमने उस पर काम करा, तो हमने उसको भी काम करा, कितने मतलब हमने पैसे फीस मांगनी है, 110 मतलब फीस मांगनी है हमने अभी, जो हमने $200 मांगने अभी लोगों से, तो मतलब फीस आप लोगों ने बाद में देनी है, फंडिंग आपके खातों में आती है, हमारे पास नहीं आती, आपने अपनी ईमानदारी से देनी है। आज आप ज्वाइन करते हैं कोर्स, आज करते हैं तो कल आपके अकाउंट में फंडिंग नहीं आएगी, 90 दिन के बाद आएगी, 60 दिन के बाद आएगी, तो कोई कैच नहीं है, कॉल करें, कुछ हिडन नहीं है, 437-264-3175
1: एक बार नंबर फिर दे दो जी, और नाल दी नाल जांदे जांदे भी दस दो जे फैमिली ऑफ फाइव की आप गल करते हैं, दो बच्चे हसबैंड वाइफ आ, तो कितनी फंडिंग मिनिमम बन जाती है?
0: फैमिली फाइव को लाइक बहुत अच्छी फंडिंग मिलती है, उसमें से 100,000 बन जाता है उन लोगों का, उनके अकाउंट में सीधा आता है 2 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट से डायरेक्ट, उसमें से $50,000 स्टार मार के कह रहा हूँ आज की डेट में $50,000 ग्रांट है टैक्स फ्री, रेस्ट $50,000
1: एक साल की गल कर रहे हैं, 2 साल की,
0: एक साल के प्रोग्राम के लिए,
1: एक साल के प्रोग्राम से $50,000 ग्रांट बन सकती है?
0: बनती है, ये वो ट्रेडिंग नहीं है, आप जीत सकते हैं, आप इतना जीत सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है जी, बनती है। ऑफिस आए, जितने केस देखने देखे, फंडिंग हासिल करें, साथ में स्किल हासिल करें।
1: सो बिल्कुल जी, तुसी नंबर एक बार फिर दे दियो, एक बार नहीं 3 बार दे दो, ताकि आराम नाल नंबर नोट किया जा सके।
0: बिल्कुल जी, 437-264-3175 437-264-3175 आप हमें अभी कॉल करें, एस्टीमेट लें, हमारे ऑफिस आए, आपका इसमें अच्छा बेनिफिट, आपके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, कुछ लोग ना शेयर नहीं करते, आपस में बताते नहीं फ्रेंड्स को, जब अच्छा काम हो जाता है, राइट, कुछ लोग अच्छी चीजें बताते हैं, कुछ लोग अपने तक ही रखते हैं, तो इसलिए आप मिस ना करें 437-264-3175
1: 437-264-3175 437-264-3175 यूनी ग्लोबल एडवाइजरी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो 905-673-3337 905-673-3337 की गल्लां बातें हो रही ने, साडे नाल पंधीर साहब भी जुड़े हुए हैं, पर 905-673-3337 मैं एक मैसेज लैके उस तो बाद पंधीर साहब आना, तो थोड़ा बड़ा ही खूबसूरत अज कैनरा डे आ, तो अज थोड़े कन्ना दे विच ना कुछ मिठी चाशनी पाने हैं, खूबसूरत सुरां दे नाल भिजी हुई आवाज़, अज कहने पंधीर साहब नूं कुछ वधिया सुनाओ तां कि साडा भी कैनरा डे बन जाए। सो 905-673-3337 नानक रेनोवेशन दा थोड़ा सुनेहा दे दिए।
2: ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਲਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਕੰਕਰੀਟ ਡਰਾਈਵਵੇ, ਪੈਟੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 416-902-9293 ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
1: ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ

0: वाह।
1: बीचते थे शिपा देवी नजारे ने, आईलैंड ते रंग बरंगे फुहारे ने करन न...

0: पंजाब ते अमीर विरसे दी बुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
1: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
0: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
2: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
1: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: 7998877 थैंक यू जी।
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
2: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
3: एडवरटाइजमेंट करनी है तुसी अपने बिजनेस नु प्रमोट करना ते तुसी साडी टीम नाल संपर्क कर सकते हो 647 835 5294 दे उपर तुसी संपर्क कर सकते हो।

सतगुर होए दयाल सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू चूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले आ स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
2: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ 29

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन लक्की भाजी दीआं बनीआं किचन कैबिनेट देख के गुआंढ वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
2: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करदा आ रहा है केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो A1 केक्स

0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਇਨਕਮ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਫਰੋਮ ਮੋਰਗੇਜ ਡਿਲੀਜੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ।
1: ਹੈਲੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
0: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ?
1: ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ, ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਲੋਗ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕੀ, ਇਫ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਗ ਇਨਕਮ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਬਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੈਮ?
1: Definitely, ji. Sat Sri Akal to all the listeners. Very good afternoon and happy Canada Day. Kiran ji, aapko, aap Sukhi Pa ji nu aur sare listener nu, I hope you had a fantastic family day and Canada Day together yesterday. I enjoyed it. I hope you guys too. Aur dekhen, self-employed bahut achha important concern hai. Aapne bataya kafi self-employed log hain, wo income banate hain but they do not declare. Right? Iska main reason to Kiran ji ye hai ki because of the high expenses on the self-employed, so they are not able to declare much income. But there are certain very good few programs we have jiske basis pe aapki mortgage aapki possible hai, very good chances ki aapki mortgage approve ho. To uske liye aap 2-4 lakh dollar banate hain magar 20-30 thousand income declare karte hain, that is not the problem, right? So there are few programs, उसके बेसिस पे आपकी मॉर्गेज हो जानी है। अच्छा, आप सिचुएशन आती है आपका लो इनकम है, लो क्रेडिट है, उस पर कैसे करेंगे? ठीक है, देखो बैंक की मॉर्गेज के लिए 680 क्रेडिट स्कोर चाहिए, राइट? मिनिमम 650 एंड अबव। बट बी लैंडिंग के लिए आपका स्कोर, अगर आपने कंज्यूमर प्रपोजल किया है, बैंकरप्सी की है, तो उस सिचुएशन में आप, अगर आपको आपकी मॉर्गेज बैंक से होना चैलेंजिंग हो जाता है, बट उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र नहीं करनी है। देर आर ऑप्शन अवेलेबल जिसके थ्रू आपकी मॉर्गेज हो जानी है। मैं प्राइवेट मॉर्गेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट प्राइवेट। आपकी मॉर्गेज हो जानी है, आपको जिसको बोलते हैं बी लैंडिंग सेम लाइक सिमिलर टू द बैंक, तो आपकी मॉर्गेज हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको प्राइवेट मॉर्गेज लेने की जरूरत नहीं है। देर आर सोल्यूशन, एज लॉन्ग एज आपके घर में एक्विटी है, आपका देर इज आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। तो सिचुएशन इज नॉट अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड, इज अबाउट हाउ यू स्ट्रक्चर योर एंटायर डील। So being in the industry very long time, so I'm here, I have expertise, I will going to help you whether it's employed or self-employed, give me a call. Aur Kiran ji, ek cheez aur important bata chalo ki builder purchase nahi, kafi jo hai okay situation ho gayi hai ji, kafi jo hai kafi isme shortfall aa rahe hain, property ki jo value hai wo right value jo purchase ki thi wo shortfall aa gayi ji uske andar, hai na? There is a 1-2 lakh dollar ke shortfall लगी। वो सारे क्लाइंट जिनकी क्लोजिंग आने वाली जुलाई में, काफी लोग की आ रही, काफी की अगस्त में आ रही है, और 2-3 बिल्डर की क्लोजिंग किसी की 14 को 16 जुलाई को भी आ रही है, राइट? तो उसमें 2 लाख से लेके 2.5 लाख का शॉर्ट अप्रेजल आ रही है जी।
0: बिल्कुल जी,
1: तो इट इज अ वेरी वेरी हाई शॉर्ट इन अप्रेजल। तो अगर आप इसी सिचुएशन में है, मेरे पास सोल्यूशन है, गिव मी अ कॉल, I will be able to help you out, especially अगर आपका short appraisal आ रहा है, आपकी value घर दी जो है कम हो चुकी है, give me a call, I have a solution. My direct number, you can call me, this is Mukesh Chauhan, mortgage broker from Mortgage Diligent. Number जो है 647-512-7000, 647-512-7000।
0: बिल्कुल जी मुकेश जी, अब next question मेरा ये भी है साथ, if some

0: फ्रेंड है ना अमन भाजी है ना अमन भाजी मेरे फ्रेंड ने ना लिया कुत्ता जर्मन शेपर्ड मैं कि साल डेढ़ साल बाद घरे गया तो मैं क्या कुत्ता वड़दा तो नहीं अमन भाई ओ नहीं नहीं आ जा नहीं वड़दा वो जिदा ही भाजी मैं अंदर वड़िया कुत्ते ने घटो घट पाउंड का मीट मेरी भाजी लत तो ला लिया तो मैं अमन ने फिर पता की है यार इन पहला तो किसी ने वड्या नहीं तेनू पता नहीं क्यों वड लिया इन बोरगे के होंगी यार मेरा 100 फाइल मेरी निकल गई पता नहीं क्यों अड़ गई पहला तो कभी यार कभी इदा होया नहीं हरेक फाइल हरेक फाइल प्राइवेट करा के अगले बंदे टंग दो जिस जो गल सिर्फ कमीशन के पैसा बनाने तक रह गई ना वो देखो मैं हमेशा तुम कितने जाते हो ना नंबर नहीं लिखे होंगे मेरी फाइलों के मैं परसनल नाम लिखदा बंदे दे साड़ी फाइल से किसी के उत्ते नंबर नहीं लिखा होंगे परसनल तरीके दे नाल बंदे नूं जानदे कले कले बंदे दी सानूं डिटेल पता होंगे कले कले बंदे जब तक अगर मेरे को 90 दिन पहला फाइल आ गई पहले दिन तो लैके क्लोजिंग तक बंदे दा नाम और कितने फाइल खड़ी है चाहे स्टाफ काम करदा मेरे को पुछ लो तुसीं
1: राष्ट्रपति कैंपेन अपनी कामयाबी दसो जी थोड़ी कामयाबी कहते पत्रकार पुछदा उन्होंने कैंपेन मैनेजर कि थोड़ी कामयाबी कहते तो कहता तेनों की लगता भी मेरी कामयाबी का की राज है कहता मैनू यह लगता कि 10,009 याद होणगे बंदियां दे दुनिया दे विच सब तो प्यारा बंदे नूं अपना नाम आ भाई जी सब तो प्यारा तुसीं कितें बैंक दे विच जाके किसे नूं कह दोगे उहदा नाम लैके है ना मिस्टर जॉन हाउ आर यू ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ 2 ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਸੋਚੀਆਂ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
1: दवाई दा काम करूगी सारे मेरे लिए भी करदी आ तुहाडे लिए भी करूगी एक डायलॉग दे विच तुहानू चाहे किसी चीज़ का डर आ जिंदगी दे विच किसी भी चीज़ का डर तुहानू यह आ कि यार मेरी मोरगेज नहीं होनी तुहानू यह आ कि यार मेरा घर ना चले जाए तुहानू यह आ कि यार मैं की करूँगा तुहानू यह आ कि मेरा वीज़ा लगेगा मेरा नहीं लगेगा किसी मैनू मेरा मतलब फाइनैशियल लॉस ना हो जाए किसी किस्म का डर आ एक लफ्ज़ के खत्म कर देना अज के एक डायलॉग के खत्म हो जाए अब तो बाद डर हट जाओगे किसी भी चीज़ का थोड़ा यह डर आ कि सपना कट जाए थोड़ा यह डर आ कुत्ता लत्त फड़ ले डर का इलाज किसी किस्म के डर का इलाज जिवें कहते ना बसा च बेच देंगे भी सोने से कम नहीं गुम जाए तो गम नहीं 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए सो कहते हाँ चोर इसे चुराता नहीं सुनहरे से बनाता नहीं 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए उस चाइनीज ही बेचते फिर देंगे सो वो 10 रुपए मैं थोड़ा देने लगा फ्री एक नुस्खा है जे किसी किस्म का थोड़ा बी डर डर का इलाज नॉलेज आ ज्ञान आ थोनू उस चीज़ का ज्ञान होगा कि तू बचना किमें आडा डर चक्या जाऊ डर का इलाज थोड़ी नॉलेज आ बी हम इन सैकंड कर दौ तो दसो
0: बिल्कुल जी मैं हम कर दिना सैकंड मैं भी दस दिना जी जे तुम डर अपना क्डना ना जी कहते दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग साड़ी दुनिया डरदी लंघ जाती भी लोग मेरे बारे की सोचने आप दुनिया को खुश कर थोड़ी आए थे जी खुश करना साड़ा काम नहीं वो होर बंद काम है समझ लो कि खुश करने का काम है मैं अपनी गल इतने रैप अप करता है किसी की अगर कोई मोरगेज बिल्डर के कोल सी हूँ अप्रेजल नहीं आ रहा नंबर नोट करो 416-804-2015 अगर किसी ने रीफाइनेंसिंग करवानी है सैकंड मोरगेज चरते चक्की हुई क्रेडिट कार्ड भर गए ने या खड़े पैर पैसे की लड़ पैगी नंबर नोट करो 416-804-2015 किसी की बीसैड के कोल मोरगेज है या किसी की प्राइवेट है या मेक आ या किसी होर खब्बे सज्जे मोरगेज पई है जिहड़ा बंदा 5.5% तो उपर रेट दे रहा फसिया ही है जी अगर रेट 3.5% करवाना चाहते हो 416-804-2015 और मोरगेज किंग का एक ऑफिस है जी डेरी एंड टॉमकन के जेडे सिवे ने ये बारे पासे नवा प्लाजा बनया 1200 ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 5 ਡੇਰੀ ਐਂਡ ਟੋਮਕਿਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਗਵਾ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: हम एक जरिया है, गवर्नमेंट आज भी बारिश कर रही है ग्रांट्स की, मिस ना करें आप इस चीज को, एंड देन कॉल करें एंड फायदा उठाएं।
1: तो अडाजे पहला भी कोर्स होया है, तामी कोई गल नहीं, तो तुसी दोबारे कोर्स दे विच एनरोल हो सकदे हो। ते जे तुसी 65-70 साल दे हो, पेंशन भी लै रहे हो, तामी एनरोल हो सकदे हो। कॉलेज दी फीस भी सरकार पे कर रही है।
0: बिल्कुल जी, कॉलेज की फीस भी गवर्नमेंट पे करती है।
1: ते हुण इहे बस गिणती दे दिन रह गए भाजी।
0: और बिल्कुल ऐसी ही बात है, लाइक जब गवर्नमेंट इतनी चीजों में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो LGBT को फंडिंग है 100 मिलियन की, L2 नाम की एक नई रेलगाड़ी बना रहे हैं ये मॉन्ट्रियल से लेके टोरंटो तक, $90 बिलियन उस पे लगा रहे हैं, जब गवर्नमेंट सिर्फ 4 बिलियन एडुकेशन पे लगाती है, तभी हमें लगता है कुछ हैरानी हो रही है।
1: इतने 4 बिलियन एजुकेशन दे?
0: बिल्कुल जी।
1: उत्थे कितना मां?
0: उधर लाइक 90 बिलियन ट्रेन बना रहे हैं मॉन्ट्रियल से लेके टोरंटो तक के लिए,
1: मतलब 4 बिलियन तो फिर वो हिसाब ना,
2: कुछ भी नहीं है,
3: कुछ भी नहीं है।
0: और आम लोग
1: नाले इन्होंने बंदे पढ़े लिखे होंगे तो ये वध कमाओगे तो इन्होंने वध टैक्स पे करेंगे।
0: सही बात है
1: ना,
0: बिल्कुल अपने देश में सिटीजन पे। ऑन अदर हैंड यूक्रेन को 60 बिलियन डॉलर चला गया है, जब उनको गवर्नमेंट क्रेडिट चेक के बिना ग्रांट और लोन दे सकती है, आपका जब चेक नहीं करी तो हमें लगता है कुछ क्या है।
1: भाई उन्होंने सिटीजन हो, तुम उन्होंने रेजिडेंट हो, तो तुम्हारे लिए
0: आज कर रही गवर्नमेंट स्पेंड, कल नहीं कर रही। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज ऑफर लगा दिया,
1: पर ये इन्होंने ये नहीं चाहिए था, सरकार ने भी थोड़े जो बंद का तो करती है, इन्होंने ग्रांट का तो बंद कर दिया।
0: बंद इन्होंने 14-15 दिन रह गए हैं,
1: तो बंद का तो करने को कहे, क्योंकि पाओ लेटर लोटर भी नहीं चलती रहने दो, बंदे औखे है हजे।
0: बिल्कुल बंदे
2: तो बहुत होंगे, हां तो बहुत पाए देंगे, जो नहीं
1: आएंगे मैं रहने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब लाइक आई डोंट नो, अगर आज अगर 10 बंदों से मिलता हूं मैं अपने ऑफिस में, तो 6-7 बंदे बड़े फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे होते हैं, और फंडिंग का नाम सुन के हमें लगता है भाई क्वेश्चन मार्क, कहीं कुछ कैच है,
1: अभी कुंडी हो गई।
0: हम तो कोई कुंडी वाला काम करते ही नहीं, ठा करके गारंटीड स्टैंप लगा के
1: सुनने वाले तो यही लगता ना भी कुंडी हो गई।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल, $200
0: काम होने के बाद देनी है,
1: काम तो बाद देनी है, कुंडी
2: अपने काम तो बाद
0: 199 या 499,
2: कोई क्रेडिट चेक नहीं,
0: गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है एजुकेशन के लिए। हम सिर्फ एजुकेशन फंडिंग में डील करते हैं, हम कुछ और जिसमें काम में सेटिंग नंबर हिलते हम करते ही नहीं है। ईमानदारी से पैसे दे देते ज्यादातर, दैट्स इट। आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से कोर्स फुली ऑनलाइन कोर्स करते हैं, 2-3 घंटे आप मंडे टू फ्राइडे फोन पे या कंप्यूटर पे लगाते हैं, एज लिमिट कुछ है नहीं, फंडिंग आपके खाते में आती है, हमारे खाते में आती नहीं है जी, और बाकी लाइक एज लिमिट नहीं है, आसान से कोर्स है, असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है। आज काम शुरू नहीं करा, 8 साल हो गए हैं, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है हर एंड डेरी पे, कॉल करें, असेसमेंट कराएं,
1: पीआर सेंटर पे पहुंचे हैं,
0: कम से कम अभी 200 पड़े हैं और 70 खत्म हो गए हैं।
1: 437 264 31 75
0: 437 264 31 75 437 264 31 75
1: कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया।
0: कोई कैच नहीं, काम होने के बाद लोग ब्लेसिंग कहते हैं, सर आप फीस बढ़ा लो अपनी, हमारे बारे में सोचते हैं आगे, ब्लेसिंग देते हैं हमें, सर आप फीस बढ़ा लो अपनी, आप कैसे, मतलब इट्स वेरी गुड थिंग।
1: माया पहला बंदा देखा जो लोगों बारे सोच
0: रहा, हमने ऑनेस्टी भी
2: नाले आम तौर पे पगे नहीं, मैं कनाडा जाके आप
1: मैनू गोरा सीगा, मैनू कहिंदा जदों मैं घर दबाउणा होवे उदों मैं आह लैके आउणा, गड्डी मेरे को वड्डी वी हैगी आ, कहिंदा गड्डी मेरे को बहिगा क्यों, कहिंदा ऐ फिर अगला कहिंदा कमीशन जो दे दियो कुछ थोड़ा मोटा, ओले मैनू दस दिन दस मैं खुश नहीं भरिया तेरे तो बड़ा अज नहीं, मेरे मन पसंद की कोई डील कल ले ली नहीं आई, कल ज्यादा तू चाह पिलाने तो डर गया, पता नहीं हूं रब जाने की गल बात, गल नहीं बनी,
4: नहीं बनी गल
1: ਬਿਲਕੁਲ
4: ਸਰ ਕਨੇਡਾ ਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਸੇਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਲੋ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢਵੀਂ ਡੀਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ,
3: ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਆ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ $700-800 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
1: ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ,
3: ਆਉਂਦੇ ਦੱਸੋ?
1: ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ 100% ਆਉਂਦਾ ਬੇ।
3: ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸਿਰਫ $99
1: ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ,
3: ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਬਸ ਨਹੀਂ,
1: ਬਸ ਕਰ।
3: ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ।
1: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ
0: ਖਤਰਨਾਕ ਡੀਲ
1: ਸੀ, ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡੀਲ?
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀ ਸੀ।
1: $99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
0: ਦੂਜਾ ਫਰੂਟ ਬਚ ਗਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ।
1: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ
3: ਗੱਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਪਰਾ ਸਾਹਿਬ,
1: ਕੱਲ ਨੂੰ
3: ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਈਨ ਦਾ ਬੈੱਡ $99 ਦਾ, ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ। $294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ, $294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ।
1: ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
3: ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ।
1: ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
2: ਸੁਣੋ, ਗੱਲ
1: ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
3: ਹੈਲੋ
1: ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ?
3: ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ,
1: ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ,
2: ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ।
3: ਦੋ ਬੈੱਡ ਕੁਈਨ ਤੇ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ
1: ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
3: ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਸਰ।
2: ਅੱਜ ਭੇਜਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ,
1: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ। ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ,
2: ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ
3: ਸਰ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ।
2: ਸਮੋਸੇ ਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ,
3: ਆ ਗਏ ਜੀ।
1: ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ,
2: ਵਾਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ।
1: ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ
0: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ?
0: 437-264-3175
1: ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ
2: ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ
1: 437-264-3175 ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
0: ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਫ ਏਅਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ।
1: ਨਾ ਆਫ ਏਅਰ, ਨਾ ਆਫ ਏਅਰ ਕਾਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਦੇ ਰੱਖਣੇ। 437-264-3175 ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

0: ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 905-564-4444 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 4372634-3175 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਥੈਂਕ ਕਾਫੀ ਸਭੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਅਬ ਸਿਰਫ 14 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ 2024 ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੇਂ ਲੈਸ ਦੈਨ $70,000 ਹੈ, आप PR citizen protected person है, ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, ये मैसेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आपका फायदा है, आपका फायदा है। जेब से पैसे निकल नहीं रहे, आ जरूर रहे हैं। बैंक से पैसे कम नहीं हो रहे, आ जरूर रहे हैं। और $500 नहीं आ रहे, ज्यादा आ रहे हैं। 30 से लेके 100,000 की फंडिंग आ रही है, जिसका मेजर पोर्शन आज की डेट में ग्रांट्स है, टैक्स फ्री है, और लाइक आपके खाते में डायरेक्ट आता है, हमारे खाते में नहीं आता। आप एजुकेशन हासिल करें, स्किल हासिल करें, आसान से कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन है, इजी टू पास है, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 30 के हैं, चाहे 75 के, चाहे पेंशन पे आप एलिजिबल हैं। क्रेडिट स्कोर अगर आपका 1, 2, 3 या 0 भी है, आप तब भी एलिजिबल है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट आपका क्रेडिट चेक नहीं करती, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा। और लाइक इसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉयड हाउसवाइफ है, आपको अच्छा फायदा है इसके अंदर। आप अकाउंटिंग सीखें, बिजनेस मैनेजमेंट सीखें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और आप फंडिंग हासिल करें। हमारे पास हार्ड कोर्सेज भी हैं, जैसे HVAC, ECA, PSW, उनमें कॉलेज जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं है
0: जी।
1: और उसमें गवर्नमेंट ही फीस पे कर रही है, आपकी जब से फीस नहीं जा रही है, गवर्नमेंट फीस पे कर रही है, आपको सेपरेटली आपके अकाउंट में 30 से 100,000 की फंडिंग आती है जी। और इसमें लाइक प्रोग्राम गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, 14 डेज बाद लोन आएगा, ग्रांट नहीं आएगी। आज अगर फैमिली ऑफ 5 है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 उसमें से ग्रांट है जो वापिस नहीं करना, 50,000 जो रेस्ट है वो ऑप्शनल लोन है, जो कि 0% पे एक साल के लिए, और 1.5 साल बाद लाइक उसका इंटरेस्ट रेट 2.5% है साल का। और बाइक की लाइक अगर फैमिली ऑफ 2 है तो अप टू 45,000 की फंडिंग आती है, जिसमें से 25,000 इज ग्रांट मनी, रेस्ट इज ऑप्शनल लोन एट 0%। आप अभी एनरोल करें, रिटायर्ड कपल है, आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट है इसमें। और हमारे ऑफिस आए 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, कोई मीठी बातें नहीं है, ऑन एयर और ऑफ एयर एक ही फीस है, 199 या 499। काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है, फंडिंग आपके अकाउंट में आती है, हमारे अकाउंट में नहीं आती। लास्ट वीक 29 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है, जिन्होंने मई में ज्वाइन करा था। आज भी 6 बंदों के अकाउंट में फंडिंग गिर गई है, जिन्होंने मई में ज्वाइन करा था। लेट ना करें, कॉल करें, ऑफिस आए, नंबर 437-264-3175, 437-264-3175, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर तुसीं भी गलबात करो सारांश नागपाल जी दे नाल। नंबर है यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक दा 437-264-3175, 437-264-3175 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है ता तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: टीम सिद्धू लेके आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील्ड रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच ते डिटैच कर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल two-story freehold townhouses but the backyard the unfinished basement naal sirf $7 lakh di range de vich in the 700s bahut jald aa rahe ne semi detached ghar $8 lakh di range de vich in the 800s releasing very soon sab to khas double car garage wale bade detached ghar sirf $9 lakh di range de vich in the 900s releasing very soon public release to pehla best lot end lot corner lot de layi jald to jald संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 शहर दे विच जगोर रोड एंड मेफील रोड ते 2500 तो भी ज्यादा घर तैयार हो रहे ने 2027 एंड 2028 दे विच कॉल टीम सिद्धू 416-302-0016 416-302-0016 टीम
0: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारा लोकी आंदे ने ते हजारा ही जांदे ने पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहंदे ने
2: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहंदे हो तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल संपर्क करो
0: कॉल 416-457-3381 416-453-3381
2: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है
2: हां इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381

0: सेम मैनर. नंबर बड़ा सिंपल है, 416-833-8533, 416-833-8533. थैंक यू नवीन.
1: थैंक यू सर जी. 416-833-8533 नंबर है. सो थोनू सब नू जिवें जानकारी असी कल भी दित्ती सी कि थोड़े अपने शहर टोरंटो ब्रैम्पटन मिसिसागा भी एक ऐसे आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं जिन्हां नू लाइव सुन के ना ऐ लगदा कि यार तुसी भी पता नहीं थोड़े कन्नां नू ऐसा एक सुकून मिलता कि बस छाड़ी गल्लां दो. थोनू पता कौन आ रहा 24 जुलाई नू लाइव परफॉर्म करने लई, ते बड़े लोगों को पता नहीं भी ये भी उन्हां दा गीत है.